मुझे रंग दिखने लगे, इतने खूबसूरत, हर कोने में अनोखी रोशनी, बिल्कुल स्पष्ट, सुंदर, मेरी सांसें चलने लगी। और हाँ, तुम समझो ना समझो, आजादी जैसा रंगीन समा और इतनी खूबसूरती के बीच पिछली जैसी मैं चमकने लगी।